0: गम क्या है,
1: एक दिल से लगे एक दिल से बुझी, अब गम क्या है,
0: गम क्या है,
1: सावन की घटा बरसाए खुशी, अब गम क्या है,
0: गम क्या है।

0: बदहोश हूँ मैं और होश नहीं, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: कुछ तू ही बता दे जोर जबी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: हो जाऊँ न मैं दीवाना कहीं, अब क्या होगा
1: क्या

गए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

0: तमाशा
1: लाए।
0: देखो 100% फिल्म ये बोले ना के गाए, कहो क्या झूठ बात है
1: नहीं
0: तो बस फिर देखो भालो, जवानी के गुण गालो।
1: दो दीवाने
0: आए,
1: अरे एक तमाशा
0: लाए।
1: देखो 100% फिल्म ये बोले ना के गाए, कहो क्या झूठ बात।

0: छाती झड़के
1: में।
0: देखो मेरे यार जवानी खेल अजब दिखलाए।
1: दो दीवाने
0: आए
1: अरे एक तमाशा
0: लाए।
1: देखो तो सभी फिल्म ये बोले नाचे गाए कहो क्या झूठ बात।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जाएं साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: अंजलि हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक, और हम ऐसा कोई काम नहीं।
1: I'm some General Stuart, 116th Regent Road Border. Good morning to you guys. For your hardware, plumbing and electrical need, Hampson General Store is the place to be.